दाम साथी धुमधाम राइट सपन नयाँ इदी मेरो टियागो इदी सँग लाइट छ सुपरफन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun. Go

कम साथी धूमधाम राइड सपन नया ईवी मेरो डिया ईवी संग लाइट्स अप सुपर फन एल्डर्स लव इट सो डू द यंग इट्स सेफ इट्स सेफ विल गेट द